गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है 107 एफएम रेनबो पर। आज अंकित आपके साथ और मैं हाजिर हूँ कार्यक्रम लेके नॉनस्टॉप गपशप। दोस्तों, सुबह के 10:03 हो चुके हैं और आपका दोस्त अंकित आ गया है आपके साथ और रहने वाला हूँ 11 बजे तक आपके साथ। दोस्तों, और जैसे कि रहूँगा आपके साथ और हमारा फ़ोन नंबर भी आपको मैं बता देता हूँ 2221314 नंबर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों नॉनस्टॉप गपशप में मैं और आप करते हैं ढेर सारी बातें, तो बातें करने के लिए आपको तो करना पड़ेगा ना। हमारा फ़ोन नंबर डायल, जी हाँ दोस्तों। और टॉपिक बताने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि क्या होगा आज दोस्तों। वैसे सोमवार को यानी मंडे को बंगाल के 14 सदस्यीय पर्वतारोहण दल को लद्दाख की दूरस्थ चांग चेनेवा घाटी में एक्सपेडिशन इनटू द अननोन नामक एक आत्मनिर्भर अभियान के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जहां वे चांग चेनेमा कांगरी 6536 मीटर पर चढ़ने और अन्य अनछुए शिखरों को सर्वेक्षण करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कभी आपने भी ट्रेकिंग या क्लाइंबिंग की है? जी हाँ दोस्तों, पर्वतारोहण, जी हाँ पर्वतारोहण हिंदी का शब्द है। अगर आपने भी ये किया है तो आइए हमसे जुड़िए, और आपने अगर नहीं किया है ट्रेकिंग या क्लाइंबिंग, अगर आपकी करने की इच्छा है तो आइए हमसे जुड़िए। और हमारा फ़ोन नंबर तो मैं बता चुका हूँ और एक बार आपको बता देता हूँ 2221314 पर यहाँ जुड़िए और आइए करते हैं ढेर सारी बातें।

0: फिल्म आवारापन 2 से दोस्तों आप सुन रहे थे जुबिन नौटियाल की आवाज में, ट्रैक जीत गांगुली का था, कंपोजिशन लिरिसिस्ट थे रश्मि विराग। और आइए दोस्तों एक दोस्त आ चुके लाइन पे, करते हैं उनसे बात। हेलो
1: हेलो, सुप्रभात।
0: सुप्रभात, कौन है आज हमारे साथ फोन लाइन पे?
1: मैं बेलघोरिया से शुभजीत बोल रहा हूँ।
0: शुभजीत, वेलकम टू माय शो। बताओ, ट्रेकिंग और क्लाइंबिंग के बारे में क्या बोलना चाहते
1: हैं? मेरा सबसे मतलब ऐसे में ट्रेकिंग नहीं कर सकता, प्रॉब्लम रहता है क्योंकि मेरे ब्रीदिंग इश्यूज है।
0: ओके।
1: लेकिन लास्ट टाइम 2025 में ही मैंने गिरिडीह में गया था, झारखंड, जहाँ पर परसनाथ का जो ट्रैक होता है ना, परसनाथ हिल, वहाँ पर गया था क्योंकि मेरा बहुत इच्छा था लॉर्ड शिवा का टेम्पल वहाँ पर जो है 23rd जैन दिन तीर्थंकर जो बोलते हैं, तो उसका दर्शन करने के लिए। तो वो एक्सपीरियंस काफी काफी चैलेंजिंग था क्योंकि हमेशा मैं सुना था कि झारखंड में वो सबसे हाईएस्ट पीक है
0: जी,
1: जिसको शिखर जी भी बोलते हैं। तो इतना डिफिकल्ट था, इतना अपहिल। मैंने थोड़ा बहुत सिक्किम में ट्रेकिंग किया था इससे पहले, इवन आफ्टर द फैक्ट कि मेरा ब्रीदिंग इश्यूज है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके किया था। लेकिन बरसात का जो हिल था, इतना स्टीप है, इतना अपहिल है, मैं कभी नहीं देखा। और वहां पर अजीब है कि वहां पर जो भी लोग ट्रेकिंग नहीं कर सकते, उन लोगों को पहुंचाने के लिए मोटरसाइकिल्स रहते हैं। मैंने इस तरह का चैलेंजिंग राइड, मोटरसाइकिल राइड मैंने खुद नहीं किया, लेकिन जो लोग कर रहे थे, आप मैंने विश्वास नहीं करेंगे, एक मोटरसाइकिल किस तरह से वो इतना अपहिल में जा सकता है। ऐसा लग रहा था पल पल में गिर जाएगा ऐसा। जो लोग भी चढ़ रहे थे, जो एजेड लोग है, वो लोग भी तो जा रहे थे पिलग्रिमेज पर। तो हम लोग स्टार्ट किए थे मधुबन से, तो करीब करीब हम लोग को 8.5 घंटा लगा।
0: अरे बाप रे।
1: तो हम लोग बहुत था, मतलब मैं चाहता हूँ जो लोग भी ट्रेकिंग करते हैं, अभी तक जो लोग भी बरसनाथ नहीं गए हैं, तो एक बार ट्रेकिंग कर लीजिए, उसके एक्सपीरियंस ले लीजिए।
0: तो फिर आपको वहाँ पे ब्रीदिंग इश्यूज हुई थी जब आप गए थे?
1: मेरा एक्चुअली इनहेलर और जो भी दवाई

0: वो लेके गया था, लेकिन मुझे शायद लगा कि मुझे 8.5 घंटा इसलिए लगा था क्योंकि मैंने बहुत सारा ब्रेक लिया था।
1: अच्छा अच्छा,
0: काफी सारा ब्रेक। और वहां पर एक सुविधा है, कुछ एरियाज है क्योंकि आपको काफी सारा फॉरेस्ट से पास करना पड़ता है, तो और उसमें क्या सुविधा है, कई जगह में आपको स्टेप्स दिया गया है जैसे सीमेंटेड स्टेप्स,
1: ओके
0: कुछ स्टेप्स आप उस तरह से जा सकते

0: इजी इसलिए लगा क्योंकि मैं जल्दी वॉक करके जा सकता था वहाँ पर।
1: अच्छा।
0: लेकिन जहाँ पर आपका वो सुविधा है नहीं, जहाँ पर इतना अपहिल है कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया, वहाँ पर प्रॉब्लम हुई, तो वहाँ पर मैंने ब्रेक ले लिया। लेकिन प्रिकॉशन तो लिया था, लेकिन थोड़ा बहुत मेरा ब्रीदिंग इश्यूज हुआ। तो मुझे मेरे जो दोस्त लोग थे जिन लोग का नहीं था, वो लोग बोल रहे कि हम लोग करीब 7 घंटा लग सकता है अगर हम लोग ऐसे जाए, तो मुझे 8.5-9 घंटा लगा था। तो लेकिन एक्सपीरियंस इतना अच्छा था और उसका माहौल इतना अच्छा था, और सबसे राइट टाइम जो आप जा सकते हैं वो है अक्टूबर से फरवरी के अंदर।
1: अच्छा अच्छा,
0: वो अच्छा कंफर्टेबल है क्योंकि क्योंकि झारखंड आप जानते हैं कि कितना गर्मी होता है वहाँ पर, बिहार झारखंड, तो फॉरेस्ट एरिया ऐसे भी गर्म हो जाता है तो आसपास, और मॉनसून का प्रॉब्लम नहीं है आपको उस टाइम पे, तो जरूर विजिट कीजिएगा अक्टूबर से फरवरी के अंदर। आप जब पहुंच जाएंगे ना टॉप ऑफ द हिल, उसका जो सुकून है, मतलब द टाइम व्हेन यू रीच देयर कि आप तो शिवा का दर्शन करेंगे और जितने भी जैन टेम्पल्स है, तो आपको लगा कि एक अचीवमेंट हुआ। और सबसे अजीब है, मुझे मैं देखा वहां पर 70 इयर्स 85 इयर्स ऐसे लोग, मतलब का जो मतलब क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ से भी ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ, कि हमको वो लोग बोल रहे थे क्या तुम इतना जवान हो, तुम अभी ऐसा कर रहे हो तो चलो हम लोग के साथ, इस तरह का जो मोटिवेशन दे रहे थे ना, काबिले तारीफ था।
1: थैंक यू बताने के लिए अपना एक्सपीरियंस, और ऐसे ही जाते रहो, ट्रेकिंग क्लाइंबिंग करते रहो, एंजॉय करते रहो लाइफ। और दोस्तों मैं बता रहा था आपको एक कहानी जो अभी सोमवार को हाल ही में जो क्लाइंबिंग शुरू हुई है, अभियान से पहले एक संवाद में गिनीज विश्व रिकॉर्ड धारक सत्यरूप सिद्धांत और एवरेस्ट और कंचनजंगा शिखर पर चढ़ने वाले रुद्र प्रसाद हल्दार ने अभियान के बारे में बात की दोस्तों, और वो क्या बात की वो बताऊंगा मैं अगले ट्रैक के बाद।

0: सुन रहे थे आप फिल्म इशकजादे से सूरज जगन दिव्य कुमार की आवाज में। दोस्तों ये ट्रैक अमित त्रिवेदी का कंपोजिशन, कौशर मुनीर के थे बोल। और आइए दोस्तों एक दोस्त जुड़ चुके हैं, वो भी शायद अपने ट्रैकिंग के बारे में कुछ एक्सपीरियंस साझा करेंगे हमसे। आइए करते हैं बात उनसे। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ नमस्ते, कौन है आज हमारे साथ फोन लाइन पे?
1: हाँ मैं अरूप बोल रहा हूँ हावड़ा से।
0: अरूप जी वेलकम टू माई शो, बताइए आपने ट्रैकिंग की है?
1: हाँ ट्रेकिंग तो किया है, आप अभी तक 64 हो गया, 30 बरस पहले।
0: अच्छा
1: पुरुलिया गया था तीनों माने दोस्त मिलकर।
0: अच्छा
1: वो बलरामपुर स्टेशन माने माने ट्रेन से उतारा, पैदल से हम पुरुलिया गया।
0: वाह
1: पैदल से मैंने अयोध्या पहाड़ में ट्रेकिंग किया था। वहाँ पर एक बागमुंडी का गांव है।
0: अच्छा
1: अच्छा हम तो माने उस समय जो माने माने लोगों ने एक तो लोगों ने हमको बोला जी चलो हमको माने आपको ले जाएंगे।
0: अच्छा
1: तो हम बोला कितना पैसा लेंगे? बोले 100 रुपया देंगे। उसी को 70 रुपया में हम ले गया। तो ट्रैकिंग जाते रहे। वो छोटा छोटा जो पेड़ है ना बाहर के माने घर में, वो माने पेड़ पकड़ा तो एक तो मैंने बड़ा माने माने
0: बड़ा पेड़ था,
1: मैंने बड़ा पेड़ ना छोटा पेड़ पकड़ के हम उठता है तो एक माने माने पाथर गिर गया था।
0: अच्छा
1: हमको माने चिल्लाया,
0: डर लग गया आपको?
1: मेरा माने पीछे में दो दोस्त है, हमको चिल्लाया क्या है हट गए ऐसे करके गया। और माने पुरुलिया जो हम माने वहाँ पर गया और वहाँ पर बागमुंडी गांव में गया, वो अलग खांटी माने दूध पिया था हम।
0: वाह वाह वाह, तो आपको एनर्जी आ गई होगी ट्रेकिंग के बाद। थैंक यू आने के लिए फोन लाइन पे और बताने के लिए अपने ट्रेकिंग एक्सपीरियंस। और दोस्तों पर्वतारोहण अभियान प्रतिभाशाली व्यक्तियों की महत्वाकांक्षी चढ़ाई को जल्द ही उनकी पहुंच से बाहर कर सकते हैं, इसमें बहुत संभावना है। बंगाल का कोई व्यक्ति जो एक महान पर्वतारोही बन सकता था वह शायद बड़े पहाड़ों पर चढ़ाई ना कर पाए क्योंकि इसके लिए अधिक बजट की आवश्यकता होती है। अंततः वे हार मान लेते और कोई साधारण नौकरी कर बैठते हैं। ये उन्हें मानसिक रूप से भी तोड़ रहा है और उनका जुनून खत्म हो रहा है।

0: फिल्म जन्नत 2 से दोस्तों के की आवाज में आप सुन रहे थे ट्रैक प्रीतम का संगीत सहित कादरी के बोल। और जिन्होंने अभी अभी अपना रेडियो सेट ऑन किया उन्हें बता दो कि दोस्तों आरजे अंकित आपके साथ और आज नॉनस्टॉप गपशप में मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ ट्रेकिंग और क्लाइंबिंग के बारे में, यानी पर्वतारोहण के बारे में। अगर आपने कभी किया तो आइए हमसे शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस। हमारा फोन नंबर है 2213-1341, या फिर आपने कभी किया नहीं और आपका प्लान है करने का वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और हमारे साथ एक दोस्त जुड़ चुकी है लाइन पे, आइए करते हैं उससे बात। हेलो।
1: हेलो,
0: नमस्ते, कौन है हमारे साथ फोन लाइन पे?
1: আমার যে খুব একটা নেই তা বলবো না, ভালো লাগে দেখতে, কিন্তু আমি একটুখানি ভয় পাই ট্রেকিং আর ক্লাইম্বিং করতে। আমি এটা অবশ্যই প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে বলবো যে ট্রেকিং ক্লাইম্বিং সকলে করছে, যাদের শখ করছে ঠিক আছে, তবু আমাদের মনে হয় প্রত্যেকের একটু সাবধানতা এইসব দিকে অবলম্বন করা উচিত। কারণ যেভাবে দুর্যোগ বা সব দিকে হচ্ছে, তো আমার মনে হয় সেগুলো একটুখানি যদি আমরা সাবধানতা অবলম্বন করি, নিজেদের এই সব গুলোকে যদি একটু দমন করা যায়, আমার মনে হয় অনেকটা ভালো হয়। আর হ্যালো, হ্যাঁ তো দাদা, অনেকদিন একটা গান শোনাইনি, সকলকে একটা শোনাতে পারি?
0: হ্যাঁ অবশ্যই শোনাও।
1: ওকে,

0: पड़ेगी।
1: थैंक यू पायल, थैंक यू। ऐसे ही आते रहो, जुड़ते रहो और अपने प्यारे प्यारे गाने सुनाते रहो। और दोस्तों, सत्य रूप सिद्धांत ने कहा कि कॉरपोरेट फंडिंग हासिल करने में कठिनाई के कारण समस्या और भी बढ़ जाती है। पर्वतारोहण को मुख्य धारा के अन्य खेलों जितना ध्यान नहीं मिलता, इसलिए फंड की समस्या भी हो जाती है। और अगला ट्रैक दोस्तों, अगर आप उनके शहर में पहुंच गए हैं तो आइए वो ट्रैक मैं आपको डेडिकेट करता हूं।

0: फिल्म रॉकस्टार से दोस्तों आप सुन रहे थे कार्तिक और मोहित चौहान की आवाज में, ट्रैक एआर रहमान का कंपोजिशन, इरशाद कामिल के बोल। और दोस्तों एक जरूरी सूचना, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 22 सितंबर को पूर्व 11 बजे मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल योगायोग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 में गूगल मीट वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 147वीं डाक एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की डाक सेवाओं एवं डाकघरों से पेंशन लेने वाले पेंशन भोगियों के पेंशन दावे से संबंधित शिकायत का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यौरा का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एस सी दास, सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 के नाम से भेजी जाए और ये डाक या ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in या फिर adpgcowb@gmail.com या pgwb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 31 तारीख तक यानी 31 अगस्त तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट यानी वीडियो सम्मेलन के जरिए डाक एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हों। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायता निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संचार 0332212050 या 0332216012 या 0332216500 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक पेंशन अदालत के आवेदनों ईमेल पर डाक अदालत पेंशन अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकारी आदि से संबंधित वैधिक मामले एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।
1: थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने, आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर, FM रेनबो पर।
0: जी दोस्तों आप सुन रहे हैं नॉन स्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर, 10:35 AM हो चुका है। आरजे अंकित आपके साथ मैं रहूंगा आप लोगों के साथ इस कार्यक्रम में 11 बजे तक। और आज मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं और आप लोगों से जानना चाहता हूं ट्रेकिंग और क्लाइंबिंग के बारे में। आपने कभी किया है अपने लाइफ में ट्रेकिंग या क्लाइंबिंग, या फिर आपका कोई प्लान है करने का फ्यूचर में, आप आइए हमसे शेयर करिए। हमारा फ़ोन नंबर है 2213-1341। और मैं भी आप लोगों को एक कहानी बता रहा हूँ, एक लद्दाख की कहानी, जिसने अभी हाल ही में एक ग्रुप ने सोमवार से लद्दाख में क्लाइंबिंग शुरू की है और उस क्लाइंबिंग का नाम है एक्सपेडिशन इनटू द अननोन। उसके बारे में दे रहा हूँ जानकारी पूरे कार्यक्रम में। और अभी भी थोड़ी सी जानकारी आपको ये दे दूँ कि एक्सपेडिशन इनटू द अननोन जैसी आत्मनिर्भर यात्रा के लिए ये प्रश्न विशेष रूप से प्रासंगिक हो जाते हैं कि शारीरिक तैयारी के अलावा एक टीम को चढ़ाई के बारे में सोचने से पहले ही उपकरण, रसद और संसाधनों की व्यवस्था करनी होती है।

फिल्म तनु वर्षमानों से सुंदरी चौहान, नीलाद्री और उज्जैनी की आवाज में आप सुन रहे थे ट्रैक कृष्णा शोलो का कंपोजिशन। सत्यरूप ने पर्वतारोहण के सपने को जीवित रखने के संघर्ष के बारे में बात की। वहीं रुद्र ने हिमालय में हो रहे एक व्यापक परिवर्तन की ओर ध्यान दिलाया। एवरेस्ट और कंचनजंगा दोनों पर विजय प्राप्त कर चुके रुद्र ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पहाड़ों में समय बिताने वालों का स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। हिम रेखाएं बदल रही है और ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं, जिससे उन भृदृश्यों में बदलाव आ रहा है जिन्हें पीछे हट रहे पर्वतारोही वर्षों से जानते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन पहाड़ पर 30 से 40 साल पहले बर्फ हुआ करती थी, आज वहां बर्फ नहीं है। ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं और भी पीछे आ जा रहे हैं। एक समय आएगा जब ये स्थान पूरी तरह से बंजर हो जाएंगे और तब खतरे बढ़ जाएंगे। पीछे हटते ग्लेशियर और बदलती बर्फ की स्थिति से रास्ते भी बदल सकते हैं, अस्थिर भूभाग उजागर हो सकते हैं और अभियान तेजी से अप्रत्याशित हो सकते हैं। उन्होंने कहा, पहाड़ गतिशील है। दशकों पहले जहां मानचित्र बनाए गए थे, वे आज वैसे नहीं रह सके। हम इन परिवर्तनों को अपनी आंखों से सामने देखते हैं।

देख रहे हैं। हल्दर ने व्यावसायिक अभियानों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा बार बार उपयोग किए जाने वाले ग्लेशियर पर बढ़ते दबाव के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दशकों से मानवीय गतिविधियां लगातार जारी है। ऐसे स्थान में जहां 50 या 60 वर्षों से अभियान और संस्थागत पाठ्यक्रम चल रहे हैं, इनमें से कुछ ग्लेशियर पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वे कितना तेजी से पीछे हट रहे हैं। हमें इसे बारे में अधिक जागरूकता की आवश्यकता है। उनके अनुसार इसका समाधान खोज के रोकना नहीं बल्कि जिम्मेदारी से ऐसा करना है। हम में से जो लोग पहाड़ों पर जाते हैं उन्हें अपने प्रभाव के प्रति सचेत रहना होगा और सभी के बीच जागरूकता पैदा करनी होगी।

0: हमारी चाय लबों से यूं चुराओगे।
1: फिल्म दम मारो दम से दोस्तों पापोन की आवाज में आप सुन रहे थे ट्रैक प्रीतंगा कमीशन जयदेव साहनी के बोल। सत्यरूप ने सॉफ्टवेयर की नौकरी छोड़कर पर्वतारोहण को अपना पूर्णकालिक करियर बनाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि कठिन चोटियों पर चढ़ने के लिए सबसे उपयुक्त वर्ष दफ्तर में बैठकर नहीं बिताए जा सकते। उन्होंने कहा, कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जिन पर चढ़ाई करने का प्रयास जीवन के एक निश्चित पड़ाव पर ही करना पड़ता है। आप लापरवाही नहीं कर सकते और उम्र भी एक कारक है। मैं अपने जीवन के सबसे अच्छे साल दफ्तर में बैठकर बर्बाद नहीं करना चाहता था, जबकि मुझे पता था कि मैं देश के लिए इतिहास रच सकता हूं। आखिरकार उन्होंने पर्वतारोहण और रोमांच को अपना करियर बनाना शुरू किया। लोगों को चढ़ाई और ट्रेकिंग पर ले जाने लगे, साथ ही एक ऐसा क्षेत्र में स्थायी पेशेवर स्थान बनाने की कोशिश की जहां उनका मानना है कि जुनून अक्सर एक शौक बनकर रह जाता है। उन्होंने पूछा कि किसी को ये क्यों कहना पड़े कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैं पर्वतारोहण भी करता हूं, पर्वतारोहण खुद एक पेशा क्यों नहीं बन सकता। सत्यरूप ने तर्क देते हुए कहा कि भारत के पास भौगोलिक स्थिति और प्रतिभा दोनों ही मौजूद है, जिससे वह साहसिक खेलों को एक मजबूत परिस्थिति तंत्र विकसित कर सकते हैं। हमारे पास सब कुछ है, पहाड़, रेगिस्तान, नदियां, महासागर और जंगल, जो हमें प्रकृति और साहसिक पर्यटन के केंद्र बना सकते हैं। लेकिन इस क्षमता को कई लोगों के लिए एक व्यवहारत करियर विकल्प में बदलने के लिए कुछ ऐसा चाहिए जो केवल जुनून से नहीं मिल सकता। और दोस्तों बढ़ेंगे कार्यक्रम के आखिरी गीत की तरफ और इसी गीत के साथ आपका दोस्त अंकित ले लेगा इजाजत। मिलूंगा फिर आप लोगों से मैं कुछ दिनों बाद, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड अ वेरी हैप्पी संडे।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, अब आपके एक उंगली के इशारे पर, कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: Watch for free.
1: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
2: कोई बोले राम राम,
1: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप
1: बड़ी बहू ये तुम्हारे ना
2: इतनी भी क्या जल्दी थी
1: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना
2: और ये
3: मेरी गुड़िया के नाम
4: पर दादी
1: हाँ
4: आपके नाम
5: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो
1: शुभ शुभ बोलो
4: क्या
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए सतर्क रहिए
7: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा याद रखें समाधान आपके पास है टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है यहाँ आपकी बात सुनी जाती है समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है आप अकेले नहीं है मदद बस एक कॉल दूर है
0: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात
8: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार मन की बात के इस नए एपिसोड में आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सब जानते हैं कि एक ऐसा मंच है जहां हम नए प्रयासों को सामने लाते हैं देशवासियों के इनोवेटिव आइडियाज पर चर्चा करते हैं इनमें से कितने ही आइडियाज ऐसे होते हैं जिनके पीछे लोगों ने जीवन की अथक ऊर्जा लगाई होती है साथियों कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा हूं उन्होंने आगे बताया यह आइडिया बहुत ही सिंपल है आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए मुझे पता चला कि यह काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है www.bharatrajya.com उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे श्री कृष्णा जी से ही बात की जाए साथियों कृष्णा जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं कृष्णा जी नमस्ते
9: नमस्ते सर नमस्ते
8: भाई मुझे पता चला है न आप टेक की दुनिया से हो न आप हिस्ट्री टीचर हो फिर भी आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हिस्ट्री की साइट बना डाली तो मुझे बहुत उत्सुकता है ये सब कैसे हुआ
9: धन्यवाद सर आपसे बात करके बहुत मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है तो सर मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं

0: हूँ। तो सर मैं एक इंजीनियर था, फिर मैंने MBA किया, फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में चला गया। लेकिन ये सब जब भी करता था तब भी मेरे को बचपन से इतिहास में, हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन हिस्ट्री, हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग। एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं, हिस्ट्री को एक कहानी बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
1: कृष्णा जी, भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में आपको लगा इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होनी चाहिए?
0: सर अगर आप भारतीय इतिहास जैसे हमारे स्कूलों या कॉलेजों में सिखाया जाता है, जैसे आप देखते हो, तो वो एक कोई एक एम्पायर या कोई एक किंगडम उसके दृष्टिकोण से, उसके नजरिए से सिखाया जाता है, और वो एम्पायर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन भी मिलता है। इस चक्कर में बाकी के बहुत सारे जो हमारे साम्राज्य थे, जो महान साम्राज्य थे, जैसे चोलास थे, पल्लवास थे, कारकोटा डायनेस्टी था कश्मीर में, अहोम्स थे, जिन्होंने कम से कम 600 साल आसाम में अपनी संस्कृति और अपने वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखा, ये सब के बारे में हम नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए।
1: कृष्णा जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी 3 लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
0: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजराज चोला या राजेंद्र चोला सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे। तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल या गंगाईकोंड चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की, उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले 1000 या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके, तो वो मुझे उनसे जानना है। और दूसरी जो पर्सनैलिटी है, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अंडररेटेड पर्सनैलिटी है सर, उनका नाम है हेमू। तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं, तो हमको ये नहीं पता है कि वो जो हेमू जो थे सर, वो एक कॉमन मैन थे, साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे। उधर से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया, और वो नॉट ओनली वो एक एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से उन्होंने 22 लड़ाइयां जीती। तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे वो एक आम आदमी से एक इतने बड़े राजा बने, वो उनका वो जर्नी मैं जानने की बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर। और तीसरी जो है, ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, शी इज अ वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी। तो ये जो है एक उड़ीसा में एक किंगडम है जिसका नाम था भौमाकारा डायनेस्टी। तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और इसके वजह से वो एम्पायर बहुत छोटा हो गया, और उसके जो सरदार थे, उसके जो लीडर्स थे, वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे। तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली, एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया, बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे। तो दीज आर 3 इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुम आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री सर।
1: कृष्णा जी, आपको लगता है कि इतिहास को जी रहे हैं, आप पूरी तरह इतिहास में डूब चुके हैं। देखिए, मैंने भी बड़े उत्सुकता के साथ आपकी साइट देखी है, और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि आपकी साइट पर एक ऐसा टैब है जहां लोग करेक्शंस और सजेशन भी दे सकते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए ओपन रहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लोगों से सुझाव मिलना शुरू हुआ है क्या, और आप उन पर कैसे काम करते हैं?
0: हाँ सर, इन लोगों से बहुत सुझाव आते हैं सर। सुझाव 2 प्रकार के आते हैं। एक सुझाव ऐसे आते हैं जो हमको करेक्शन सजेस्ट करते हैं कि इस प्रदेश में, इस टाइम में, इस राष्ट्र में ये राजा थे, या इस टाइम में ये युद्ध हुआ था, तो ऐसे कुछ सजेशंस आते हैं। दूसरे सजेशन आते हैं कि आप इस वेबसाइट में ये फीचर भी डाल सकते हो या वो फीचर भी डाल सकते हो। तो हमको दोनों प्रकार के सजेशन आते हैं। तो जैसे अगर हमको ऐसा एक सजेशन आए कि इस प्रदेश में इस राजा ने इस टाइम पे राज किया था, तो हम वो सजेशन को लेते हैं। तो हमारे जो सोर्सेस है, जैसे हमको किसी ने सजेशन में दिया था कि हमने इंडिया को

0: तो दिखा दिया, अगर प्रदेश के लेवल पे भी दिखा सकते हैं तो और अच्छा होगा। तो हमने वो फीचर इम्प्लीमेंट किया। और फिर हमने दूसरे एक फीचर आया था जिसमें हमने एक ट्रम्प कार्ड जैसा बनाया था, सारे एम्पायर के डेटा स्टेटिस्टिक्स देखे ताकि वो बच्चों तक पहुंच सके। तो किसी ने एक सजेशन दिया था कि उसको आप एक जगह पे लेके आइए ताकि हम सब डाउनलोड करके हम सब शेयर कर सके, तो वो हम फीचर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमें जितना जानना इम्पोर्टेंट है कि हम गलती करेंगे, हम क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है, और वो जान के ही हमने वो करेक्शन का टाइम लगाया ताकि ये हम सबकी साइट हो और आगे जाके सारे कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम एक ऐसा साइट बनाए जो अगले कुछ साल तक इतिहास से एक मजेदार सब्जेक्ट बनाए।
1: कृष्णा जी, आपने सचमुच में बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, हिस्ट्री के अलावा आपकी कई सारी हॉबीज होगी, और भी बहुत कुछ करते होंगे आप।
0: नहीं सर, हम थोड़े बोरिंग टाइप आदमी है सर। हम टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और इतिहास में रखते हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी और इतिहास मिल गया इसी में हम डूबे रहते हैं पूरा दिन।
1: चलिए कृष्णा जी, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। आपने एक अच्छी शुरुआत की है और आपका तरीका भी ऐसा है कि लोग जुड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना है।
2: साथियों, कृष्णा जी का ये प्रयास सिर्फ इतिहास के विद्यार्थियों को नहीं, ये हम सबको अपने अतीत को रोचक तरीके से जानने में मदद करेगा। आपके पास भी ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी हो तो उसे जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है। साथियों, नशे की लत सिर्फ एक व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम पूरे परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं। मैं उन लोगों की सराहना करूंगा जो ड्रग्स के खिलाफ दूसरों को जागरूक करते हैं और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद में आगे आते हैं। नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? कि हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले। आप अपने प्रयासों को हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। कई बार क्रिएटिव एफर्ट फॉर्मल कैंपेन से ज्यादा असरदार होते हैं। आइए, भारत के युवा को नशे से दूर रखने, नशे से मुक्त रखने इस पवित्र कार्य में हम सब अपनी भूमिका निभाएं। आप अपने प्रयास को हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगस्त के महीने में हमें हर तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है। नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई।

और तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका,

कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे। जैसे जैसे दुनिया भर में सूरज आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय तिरंगा भी लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं, इनसे देश के साथ भी हमारा जुड़ाव और गहरा होता है। इन प्रयासों में शामिल सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों पर रोज सुबह से शाम तक लाखों महिलाएं अपने अपने काम में जुटी रहती हैं। कोई सब्जी बेचती है, कोई फल, कोई चाय का ठेला लगाती है, तो कोई फूल, दिए और पूजा की सामग्री बेचती है। कई बार बस थोड़ी सी पूंजी की कमी इनके कारोबार को आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन अब ऐसी लाखों माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। साथियों, गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली। उन्होंने अपने स्टॉल पर सामान बढ़ाया, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े, आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया। साथियों, बेंगलुरु की टीएस निंगम्मा जी की मिसाल भी बहुत प्रेरक है। निंगम्मा जी और उनके पति ने मिलकर इडली, डोसा और सांभर बेचने का छोटा सा काम शुरू किया। काम चल पड़ा, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। निंगम्मा जी को भी पीएम स्वनिधि से सहयोग मिला। उन्होंने अपनी कार्ट बेहतर की, सामान थोक में खरीदना शुरू किया और मेनू में भी कई नई चीजें जोड़ी। ग्राहक बढ़े, कमाई बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। आज वो अपने 3 बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने में सक्षम हुई है। साथियों, जब एक महिला का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य आगे बढ़ता है। बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप। मैं रेहड़ी पटरी के काम से जुड़ी सभी बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छता की एक बहुत बड़ी खूबी होती है। जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प वहां के लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो बदलाव केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं रहता। इससे उस जगह की पूरी पहचान ही बदल जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई। वहां आकाश और रोहन नाम के 2 दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं, 1 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटा चुके हैं,
इन्होंने

कितने ही तालाबों और सार्वजनिक जगहों की सफाई की है। साथियों, इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा में भी स्वच्छता और जनभागीदारी की ऐसी ही प्रेरक तस्वीर देखने को मिली। कठिन रास्तों पर हजारों स्वच्छता कर्मी दिन रात सेवा में जुटे रहे। इस वर्ष यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को कलेक्ट और प्रोसेस किया गया। मुझे इस प्रयास की एक बात विशेष रूप से अच्छी लगी, स्वच्छता के इस अभियान में श्रद्धालु भी भागीदार बने। 16,000 से अधिक यात्रियों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। 10,000 से अधिक यात्रियों को रिस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट भी दिया गया। यहां एक बहुत अनोखा प्रयोग भी हुआ, यात्रा में घोड़ों और खच्चरों के गोबर को बायोगैस में बदला गया और उसी क्लीन एनर्जी से स्वच्छ ज्योत प्रज्वलित की गई। यानी बाबा बर्फानी की इस पवित्र यात्रा में स्वच्छता भी सेवा और आस्था का एक रूप बन गई। साथियों, हमारे गांव हो या शहर, हमारी नदियां हो या तीर्थस्थल, इनकी पहचान हमारे व्यवहार से भी बनती है। और जब स्वच्छता इस व्यवहार में शामिल हो जाती है, उस स्थान की शोभा और बढ़ जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी हमारा एक छोटा सा शौक जीवन में एक बड़ी संभावना का रास्ता खोल देता है। नागालैंड के फेक जिले की वैशालु पुरोजी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। वैशालु जी किसान परिवार में पली बढ़ी। बचपन से उन्होंने अपने माता पिता को खेती करते देखा था और उन्हें खुद फूलों से बहुत लगाव था। साल 2021 में उन्होंने इसी शौक के साथ छोटे स्तर पर फूल उगाने की शुरुआत की। धीरे धीरे उन्हें इसमें एक संभावना दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि शादी विवाह हो या फिर अन्य त्योहार, फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है। वैशालु जी ने अपने इस शौक को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस सफर में उन्हें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से फूलों की वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग मिली। फिर उन्होंने केवल एक चौथाई एकड़ जमीन पर ग्लेडियोलस के हजारों पौधे लगाए। पहले ही प्रयास में 5,000 से ज्यादा फूल खिल उठे। साथियों, ये सफलता वैशालु जी के लिए एक नई शुरुआत बन गई। उन्होंने फूलों की खेती को और आगे बढ़ाया। जो फूल कभी स्थानीय बाजार में रह जाते थे, आज वो नागालैंड से निकलकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों तक जा रहे हैं। वैशालु पुरोजी की यात्रा हमें बताती है कि शौक जब मेहनत और सही मार्गदर्शन से जुड़ जाता है तो वह नई संभावनाओं का रास्ता खोल सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो एक छोटा सा प्रयास शुरू करते हैं और देखते ही देखते उनका प्रयास बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव का रास्ता बना देता है। ओडिशा के देवरीगढ़ में एक गांव है, धोडरो कुसुम। कुछ साल पहले तक इस गांव की मैथिली भुए जी लगभग हर दिन जंगल जाती थी, कभी जलावन की लकड़ी लेने, कभी महुआ और केंदू पत्ता चुनने, तो कभी बांस की कोंपले और दूसरी वनुपज लाने। उनके और वहां के अनेक परिवारों की बहुत सी जरूरतें इसी जंगल से पूरी होती थी। लेकिन फिर मैथिली जी देवरीगढ़ इको टूरिज्म से जुड़ी। यहां से जंगल के साथ उनका रिश्ता एक नई दिशा में बदल गया। अब जंगल का संरक्षण भी उनकी आजीविका का माध्यम बन गया। साथियों, मैथिली जी के जीवन में आए इस बदलाव ने दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित किया। आज 60 से अधिक महिलाएं जंगल के संरक्षण में जुड़ चुकी हैं। कोई वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व संभाल रही है, कोई घास के मैदानों के विकास से जुड़ी है, तो कुछ महिलाएं इको टूरिज्म एक्टिविटीज में योगदान दे रही हैं। साथियों, मैथिली जी और देवरीगढ़ की इन बहनों ने दिखाया है कि प्रकृति की रक्षा भी हो सकती है और जीवन में समृद्धि भी आ सकती है। इन सब

सभी बहनों का प्रयास हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे पर इस मिशन की एक सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस अवसर पर दुनिया के अलग अलग देशों और भारत से आई करीब 100 छात्राएं एक साथ जुटी। भारत के दूर दराज क्षेत्रों से चुनी हुई छात्राएं भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस पूरे प्रयास का लक्ष्य भी बहुत खास है। पूरी तरह छात्राओं की भागीदारी से तैयार एक सैटेलाइट को मून की ऑर्बिट में भेजने की तैयारी है। साथियों, मुझे विश्वास है कि इनमें से अनेक छात्राएं आने वाले समय में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। इसकी वैल्यू और डिमांड दोनों कम थी, लेकिन आज इसे डाइनिंग टेबल पर खूब देखा जा रहा है। आज यह हेल्थ और प्रीमियम मार्केट की पसंद बन गया है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी ये बहुत मददगार है। आंध्र प्रदेश में कड़पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं। नई फसल, वैज्ञानिक सलाह और सीधी मार्केटिंग से उनके छोटे से फार्म की कमाई पूरी तरह बदल गई है। तमिलनाडु के कोडाईकनाल के किसान चंद्रशेखरन जी ने आधी हेक्टर जमीन पर एवोकाडो उगाना शुरू किया। उन्हें इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं और कमाई भी बढ़ी है। कर्नाटका में चिकमंगलुरु के कुछ किसान भाई बहनों ने तो कॉफी प्लांटेशन के बीच एवोकाडो लगाया है। इससे उन्हें कॉफी और काली मिर्च के साथ अतिरिक्त कमाई भी हो रही है। साथियों, हम शहरों के रेस्टोरेंट में अक्सर एवोकाडो टोस्ट के बारे में सुनते हैं, लेकिन इसी एवोकाडो के जरिए हमारे इनोवेटिव किसानों ने कमाई की एक नई रेसिपी ढूंढ ली है। यानी अपने देश के एवोकाडो से आपके टोस्ट का स्वाद भी बढ़ा और किसानों की आमदनी भी बढ़ गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों में 3 सितंबर को हम महानायक उत्तम कुमार जी की जन्म शताब्दी मनाएंगे। साथियों, उत्तम कुमार जी एक वर्सेटाइल एक्टर थे जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में रस बस गए। फिल्म लवर्स का मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे ने फिल्म नायक द हीरो की पूरी स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी को ध्यान में रखकर लिखी थी। श्रीमान सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें डिग्निटी के साथ साथ अद्भुत इमोशनल डेप्थ भी था। किरदार को वो जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही फिलेंथ्रोपी के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन से कभी भी हार न मानने की एक और बड़ी सीख भी मिलती है। उनकी शुरुआती फिल्में बहुत नहीं चली, लेकिन उन्होंने
अपने काम पर फोकस बनाए रख।

0: इसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की। साथियों, मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था तो मैं उत्तम कुमार जी के घर के सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषे हृदय राज कोरबेन। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पर्व और त्योहार हमारी परंपराओं के साथ साथ हमें एक दूसरे से जुड़ने का भी अवसर देते हैं। आने वाले दिनों में हम और भी कई महत्वपूर्ण पर्व मनाने जा रहे हैं। 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पावन पर्व है। सितंबर में ही हम विश्वकर्मा पूजा भी मनाएंगे। इस अवसर पर अपने आसपास के कारीगरों, शिल्पकारों और विश्वकर्मा साथियों का सम्मान करना चाहिए। कुछ महीनों बाद दीपावली भी आने वाली है, इसकी तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे क्रिएटिव वर्ल्ड के साथियों, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा आपसे आग्रह है कि स्वयं भी वोकल फॉर लोकल को अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। साथियों, आपके आसपास भी ऐसे अनेक लोग होंगे जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। आप उनके बारे में मन की बात के लिए जरूर लिखिए। आपका भेजा हुआ अनुभव देश के किसी कोने में किसी के लिए नई प्रेरणा बन सकता है। मुझे आपके सुझावों और अनुभवों की प्रतीक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: माननীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী দেশবাসীর উদ্দেশ্যে প্রচারিত মন কি বাতের 137তম পর্ব। এবার শুনবেন অনুষ্ঠানটির বাংলা রূপান্তর।
4: অনুষ্ঠান একযোগে প্রচারিত হচ্ছে আকাশবাণী কলকাতার গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গ মিডিয়াম ওয়েভ 456.6 মিটারে অর্থাৎ 657 কিলোহার্টজে, সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গ মিডিয়াম ওয়েভ 297.6 মিটারে অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজে, আকাশবাণী মৈত্রী প্রচার তরঙ্গ 505 মিটারে অর্থাৎ 594 কিলোহার্টজে, আসানসোল রিলে কেন্দ্র থেকে FM প্রচার তরঙ্গে 100.3 মেগাহার্টজে

0: मातरम
1: वंदे मातरम
0: वंदे मातरम
1: वंदे मातरम
0: कन्हैया लाल
1: अमर रहे
0: कन्हैया लाल
1: अमर रहे
0: वंदे मातरम
2: जय रे
0: वंदे मातरम
2: हमें मोह माया पाशुरी दुख आधार जे था किछुई नाही जायो जे था सत्य व्रतो

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: तीन मिनट स्टूडियो के घड़ी में वक्त और मैं सुचिश्मिता आप सबके साथ लेकर आ गई हूँ कार्यक्रम जिसका नाम है तीन कदर का। और आपके दोपहर को, आपके इस वक्त को थोड़ा सा और चटकदार, मज़ेदार और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए रुक करते हैं कार्यक्रम की और जहाँ हम आपको सुनवाएंगे प्यारे प्यारे नगमे, गीत सुनेंगे और जो है खुद को फ्री रिलैक्स कर लेंगे।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

आज है 30 अगस्त और आज है गुरु रंधावा का जन्मदिन। जी हाँ दोस्तों, गुरु रंधावा का जन्म जो है गुरुदासपुर के नूरपुर वेदी में हुआ था और पंजाब के इस नूरपुर वेदी में उनका जन्म 30 अगस्त 1991 में हुआ था। 1991 में आज के दिन उनका जन्मदिन है और उन्हें हम सब की तरफ से, आकाशवाणी की तरफ से और हमारे सभी लिसनर्स की तरफ से, श्रोताओं की तरफ से जो है ढेर सारी शुभकामनाएं उनके जन्मदिन के दिन। और आज जो है गुरु रंधावा के फैंस के लिए बेहद खास दिन, क्योंकि आज है उनका जन्मदिन। आज हम भी जो है सुनेंगे उनके ही कुछ गाए हुए गीत। इसका मतलब ये नहीं कि तीन कदर का के सभी गीत उनके ही बजेंगे, लेकिन हाँ हमारी कोशिश रहेगी कि उनके भी गीत जो है हम इस कार्यक्रम में शामिल करें। दोस्तों, अगर बात कर रहे हैं हम गुरु रंधावा की, तो एक ऐसा नाम जो उन्होंने जो है पंजाबी म्यूज़िक को सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे देश दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया। दोस्तों, असली नाम इनका जो है गुरुशंकर ज्योति सिंह रंधावा है और इनका जन्म जो है पंजाब के एक गांव में हुआ। बचपन से ही उन्होंने संगीत का शौक रखा, लेकिन उनका सफ़र जो है कुछ ऐसा नहीं था कि सीधे घर से निकले और स्टूडियो पे जाके पहुँचे। नहीं, उनको स्टार बनने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने शुरुआत छोटे स्तर से की और अपनी मेहनत से गाने लिखे, कंपोज किए और खुद ही उन्हें लोगों तक भी पहुँचाया। और यही शायद उनकी कहानी का सबसे खूबसूरत पार्ट है, खूबसूरत हिस्सा है। उन्होंने किसी का इंतज़ार नहीं किया कि या फिर किसी मौके का इंतज़ार नहीं किया कि कभी उन्हें मौका मिलेगा, कोई उन्हें मौका देगा तो वो अपना रास्ता बनाएंगे। नहीं, उन्होंने अपना रास्ता खुद ही बनाया, खुद ही जो है छोटे से स्तर से अपनी शुरुआत की और आज ये मकाम वो बना चुके हैं अपने लिए। करियर की शुरुआत में बतौर स्वतंत्र कलाकार उन्होंने की थी। शुरुआती दौर में उन्होंने पंजाबी गाने रिलीज़ किए और धीरे धीरे उनकी पहचान बनी शुरू हुई। उनकी शुरुआती गानों में चढ़ गई और पटोला जैसे गाने शामिल हैं। चलिए अब रुक करते हैं, सुनते हैं बैक टू बैक दो गाने और।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

3:22 स्टूडियो की घड़ी में वक्त सुन रहे हैं कार्यक्रम जिसका नाम है तीन का तड़का। और दोपहर के इस वक्त तड़का लगाने आपकी लाइफ में दे के आई हूँ बेहतरीन कुछ नगमे जो एकदम सुन के ना जो है मूड फ्रेश हो जाएगा और नींद कहीं बस भाग जाएगी। वैसे संडे का दिन है, हम सब कोशिश करते हैं कि थोड़ी देर दोपहर में सो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि एक ही तो दिन मिलता है बस छुट्टी का, जिस दिन हम अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता सकते हैं, थोड़ा अच्छा वक्त क्वालिटी टाइम जो है उनके साथ बिता सकते हैं। साथ में अगर हम चाहें तो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा कैचअप कर सकते हैं, मीटअप कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो बस मोहल्ले के बच्चों के साथ थोड़ी देर क्रिकेट ज़रूर खेल सकते हैं। जैसा कि जनरली होता है कि हम सब देखते हैं कि संडे के जो दोपहर में या फिर शाम पे सब जो बच्चे हैं उनके साथ बड़े भी बस खेलने के लिए बाहर निकल आते हैं, मैदानों में पहुंच जाते हैं और जो है जम के संडे की छुट्टी का मज़ा लेते हैं। और ऐसे में अगर साथ में थोड़े गाने भी होते रहे और मज़ेदार बातें तो फिर क्या ही कहने है ना। तो बातों के सिलसिले को जारी रखेंगे, साथ में जो है गाने रुकने नहीं चाहिए। तो लुक करते हैं अगले गीत की ओर। क्यों

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: হরে কৃষ্ণ। সকল ভক্তদের জানাই শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উৎসবের সাদর আমন্ত্রণ। উৎসব স্থান ইসকন নিউ টাউন কলকাতা, সাপুজি বাস স্ট্যান্ড, 2 সেপ্টেম্বর থেকে 5 সেপ্টেম্বর 2026।

107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति

3:38 स्टूडियो की घड़ी में वक्त। अब रुक करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में बात करेंगे परियोजना प्रस्तुति में आज इस विषय पे। PMKSY हर खेती तक पानी नब, इसी उद्देश्य से इस योजना को बनाया गया है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश में करोड़ों किसानों की आजीविका खेती पर निर्भर करती है, लेकिन खेती की सफलता केवल मेहनत और अच्छे बीजों पर जो है निर्भर नहीं करता, बल्कि पर्याप्त और समय पर मिलने वाले पानी पर भी निर्भर करता है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी कि PMKSY शुरू की। इस योजना का मूल उद्देश्य है हर खेती को पानी और उपलब्ध जल का अधिकतम उपयोग हो। योजना के माध्यम से जो है सिंचाई सुविधा का विस्तार करने के साथ साथ पानी की बर्बादी रोकने और खेती में जल उपयोग की दक्षता बढ़ाने का पर जो है जोर दिया गया है। किसानों के लिए सूक्ष्म सिंचाई जैसे ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ड्रिप सिंचाई के में जो है पानी बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ों तक पहुंचता है, और जबकि स्प्रिंकल में जो है मध्यम से पानी वर्षा की तरह खेती पर वितरित किया जाता है। इससे पानी की बचत होती है और कम पानी में भी बेहतर खेती संभव हो पाती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य वर्षा के पानी का संरक्षण और जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन भी है। खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के से जो है किसान केवल बारिश

पर निर्भर नहीं करता और फसल उत्पाद को अधिक स्थिर बनाने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा सोचिए, जब खेत में पानी सही समय पहुंचेगा तो किसान बेहतर तरीके से फसल को योजनामय तरीके से बना सकेगा, यानी पानी की बचत होगी, साथ में खेती की लागत को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी और कृषि उत्पादकता बढ़ने से इसका जो है बढ़ने के अवसर पैदा होंगे। आज जब जल संकट पूरी दुनिया के सामने बड़ी चुनौती है, तब पानी बचाना और पानी का सही उपयोग करना हम सभी की जिम्मेदारी है। किसानों के लिए आधुनिक सिंचाई तरीकों को अपनाना और आम नागरिकों के लिए जल संरक्षण की आदत विकसित करना दोनों ही बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केवल खेतों तक पानी पहुंचाने की पहल नहीं बल्कि जल संरक्षण, आधुनिक खेती और किसान की समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास भी है। तो आइए हम संकल्प लें कि पानी की हर बूंद का सही उपयोग करेंगे, जल का संरक्षण करेंगे और अपने किसानों के साथ मिलकर एक जल सुरक्षित और समृद्ध कृषि व्यवस्था बनाने में योगदान देंगे।

107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का। टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर। टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर। रेनबो पर।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

कार्यक्रम सुन रहे थे तीन का दरगाह। मैं सुचिश्मिता आप सबके साथ है और मैटिनी शो में सुना हमने कई सारे बेहतरीन नगमे और जो है साथ में एंजॉय किया आज की दोपहर। और गाने सुनते सुनते बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला कि कब तीन से बस चार बजने वाले हैं 6 मिनट बाद। अच्छा 1 मिनट अभी स्टूडियो के घड़ी में वक्त हो रहा है और अब कार्यक्रम का तीन कतर का कार्यक्रम से आखिरी गीत सुनाऊंगी आपको और इसके साथ कहूंगी टाटा एंड बाय बाय। सुन रहिए साथ रहिए 107.9 AIR FM रेनबो दिल से दिल तक। एक बार फिर हाजिर रहूंगी आप सबके साथ लेकर कार्यक्रम छाया लोक ठीक शाम के 7 बजे।

0: फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
1: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
0: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
1: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: का योगदान।
1: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
0: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
1: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को सम्मान, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: यादों की बारात।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शाहरुख यादों की बारात। मैं सुचिश्मिता आप सबके साथ और न्यूज ऑन एयर ऐप पर सुन रहे हैं आप इस कार्यक्रम को 7:34 स्टूडियो की घड़ी में वक्त संडे की शाम और यादों की बारात कार्यक्रम में आप जैसा जानते हैं कि हम उन फिल्मों से बात करते हैं जो फिल्में इसी दिन के आसपास रिलीज हुई हूँ पिछले कुछ सालों में। आज के इस कार्यक्रम में हमने चुने हैं कुछ बेहद खूबसूरत फिल्म जो आप तक पहुंचाऊंगी। इन ये फिल्में जो है 27 से 31 अगस्त के बीच में जो है रिलीज हुई अलग अलग साल में, और कई फिल्में बहुत ज़्यादा हिट हुई। और हिट फिल्मों में से हम आज बात करेंगे धूम, साजन, रॉक ऑन, बॉडीगार्ड और स्त्री की। सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

सात बज के 41 मिनट स्टूडियो के घड़ी में वक्त धूम के बाद दूसरा जो गीत मैं आप तक पहुंचाऊंगी वो है फिल्म रॉक ऑन से। सुनेंगे इस गीत को हम रॉक ऑन फिल्म से और फरहान अख्तर की आवाज में, साथ में है रमन महादेवन। रुक करते हैं अगली गीत की ओर और रॉक ऑन फिल्म से सुनते हैं इस खूबसूरत से गीत को।

कभी कभी कैलेंडर की कुछ तारीखें सिर्फ तारीखें नहीं रह जाती, उन तारीखों के साथ कुछ चेहरे, कुछ गाने, कुछ डायलॉग्स और कुछ यादें सब जुड़ जाती हैं। और आज यादों की बारात में 27 से 31 अगस्त के बीच इतने सालों में, पिछले सालों में जो फिल्में हुई उनमें से 5 फिल्में लेके आई हूँ आप तक। इनमें कई ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने अपने दौर में दर्शकों को अलग अलग वजहों से एंटरटेन किया। डूम, रॉक ऑन, साजन, बॉडीगार्ड, स्ट्री। रॉक ऑन से सुना अभी आपने इस गीत को, अगला गीत फिल्म साजन से। सुनते रहिए, साथ रहिए। मैं शुतिश्वेता आप सबके साथ 107 AIR FM रेनबो, दिल से दिल तक पर कार्यक्रम यादों की बारात।

0: जादू की बारात।
1: स्टूडियो की घड़ी में रुक वक्त और सुनेंगे आई लव यू वालीकट फिल्म से इस गीत को सुनते जाएंगे एक छोटे से न्यूज ब्रेक पर। न्यूज ब्रेक पर उस पर रहूंगी मैं शुजिश्वता आप सबके साथ।

थ्री फिल्म से सुना आपने इस गीत को, और आज बातें हो रही हैं यादों की बारात में, पांच फिल्मों की, और बातें होंगी सबसे पहले धूम की। धूम यानी कि वो फिल्म जो आया था, रिलीज हुई थी 27 अगस्त 2004 में, निर्देशन संजय गाधवी की और प्रोडक्शन आदित्य चोपड़ा का, म्यूजिक प्रीतम की, और मुख्य किरदार में इस फिल्म में दिखाए पर दिए थे अभिषेक बच्चन, जॉन अब्राहम, उदय चोपड़ा और इशाद देवल, रिमी सेन। कहानी चोर और पुलिस की थी, लेकिन इस फिल्म में जो है विलन को यानी कि चोर को इतना स्टाइलिश दिखाया गया था, और वहीं धूम में जो बाइक्स पे स्टंट हुए, बाइक्स में जो वो रेस हुई, ये सब अलग ही लेवल पे था। और जो है ये जॉन अब्राहम का कबीर वाला जो विलन का रोल था, यंगस्टर को बेहद आकर्षक किया इस कैरेक्टर ने। लेदर जैकेट, सनग्लास, एटीट्यूड, सबसे बढ़कर बाइक्स, यही धूम की सबसे बड़ी पहचान बनी। अगर बात करें उसके बाद दूसरी फिल्म की, तो बात होगी रॉक ऑन की। 4 साल आगे बढ़ते हैं और 19 अगस्त 2008 को सिनेमा हॉल में, इस बार बाइक्स नहीं गिटार्स थी, जी फिल्म रॉक ऑन। कास्ट में फरहान खान, अर्जुन का रामपाल, पूर्वा खोली और ल्यूक कीने थे, साथ में प्राची देसाई थी, और अभिषेक कपूर और प्रोडक्शन था फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी का। कहानी चार दोस्तों की थी और एक ग्रुप था, एक ग्रुप बैंड था, यही चीज़ रॉक ऑन में दिखाई गई। सिर्फ एक म्यूजिक फिल्म नहीं थी ये फ्रेंडशिप, रिग्रेट, सेकंड चांस और अनफिनिश्ड ड्रीम्स की कहानी थी। फरहान अख्तर उस समय जो है फिल्म मेकर थे, एक्टर थे, सिंगर थे उस फिल्म में, लेकिन डायरेक्टर अभिषेक कपूर चाहते थे कि फिल्म में लीड सिंगर की आवाज़ आर्टिफिशियल ना लगे, इसलिए उन्होंने फरहान अख्तर की आवाज़ में एक अलग टेक्सचर महसूस किया और उन्हें फिल्म में कास्ट किया। और अब रुक करेंगे बैक टू बैक दो गीत, धूम से और रॉक ऑन से, सुनते हैं साथ में 107 AIR FM ट्रेन पर, दिल से दिल तक।

8:48 स्टूडियो की खड़ी में वक्त बातें होंगी अब साजन और बॉडी गार्ड की। अगस्त 1991 को साजन रिलीज हुई। संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और सलमान खान की द्वारा अभिनीत इस फिल्म में एक लव ट्रायंगल दिखा, जिसे बॉलीवुड ने

बार बार याद किया और ये उस साल की बेहतरीन फिल्मों में से एक थी। साजन जितना अपनी फिल्म के लिए, अपनी कहानी के लिए लोगों के दिलों में रहा, उससे कई ज़्यादा शायद उस फिल्म के गीत के लिए उन्हें उस फिल्म को लोग याद करते हैं। आज भी इस फिल्म के गाने सुनते ही 90s के रोमांटिक नॉस्टैल्जिया सामने आ जाते हैं। कहानी की जड़ें भी इंटरेस्टिंग थी और यहाँ दिखाया गया कि एक व्यक्ति जो खुद किसी लड़की से प्यार करता है लेकिन अपनी फीलिंग्स को व्यक्त ना करते हुए अपने दोस्त की मदद करता है उस लड़की को, उस लड़की तक प्रेम के प्रस्ताव को पहुँचाने के लिए, यानी प्यार, दोस्ती, सेक्रीफाइस और आइडेंटिटी की एक जटिल इमोशनल ट्रायंगलर। बात करेंगे बॉडीगार्ड की। 31 अगस्त 2011 को रिलीज हुई ईद के मौके पर बॉडीगार्ड। कभी कभी फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं रहती, फिल्म बन जाता है एक अलग ही क्रेज। सिनेमा बिजनेस में ये फिल्म बहुत बड़ी हिट रही। कभी कभी ऑडियंस फिल्म को सिर्फ फिल्म की कहानी के लिए नहीं देखते बल्कि स्टार एक्सपीरियंस के लिए भी देखते हैं और बॉडीगार्ड ऐसी ही एक फिल्म बनी। सलमान खान बने लवली सिंह, करीना कपूर बनी दिव्या राणा और एक धीरे धीरे रिलेशनशिप जहां लड़के ने कभी लड़की को देखा नहीं, बस फोन पे बातें करते हुए उनके इमोशन जो है एक दूसरे के लिए बनते गए। कहानी में लवली सिंह जो है दिव्या की सुरक्षा के लिए उनके बॉडीगार्ड के रूप में आते हैं लेकिन धीरे धीरे कहानी में प्रोटेक्शन और प्यार एक जगह पहुंच जाती है। लवली को एक लड़की का फोन आता है लेकिन आवाज से उसे प्यार तो हो जाता है, उसे नहीं पता कि दूसरी तरफ कौन है। और इसी कहानी के साथ बॉडीगार्ड फिल्म जो है आगे बढ़ी और ऑडियंस के दिलों तक अपनी एक जगह, अपनी एक पहचान बना ली। सुनते हैं इसी फिल्म के दो गीत।

God. और अब बात करेंगे आखिरी फिल्म की, लेकिन वो फिल्म जो 31 अगस्त 2018 को बॉलीवुड से हमारे सिनेमाघरों में आई। एक ऐसी फिल्म आई जिसमें बॉलीवुड को बताया कि यह डर और हंसी एक साथ भी बिक सकते हैं। नाम था स्त्री। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी मेन किरदार में थे और इस फिल्म ने हमें बताया कि भूतों के साथ हंसी भी आ सकती है। मतलब ये अलग ही कहानी थी। जिन्होंने इस फिल्म को देखा है उन्हें याद होगा कि ये फिल्म जो है देखने के बाद आपको कितना मज़ा आया होगा। सुनते हैं इसी फिल्म का एक गीत और इसी के साथ मैं कहूँगी आप सबसे टाटा एंड बाय बाय। सुनते रहिए साथ रहिए 107.9 FM रेनबो, दिल से दिल तक। इसी के साथ सुचिश्मिता आज लेगी आप सबसे इजाज़त, लेकिन इस वादे के साथ कि ऐसे ही किसी कार्यक्रम में दोबारा मिलूंगी आप सबसे। सुनते रहिए साथ रहिए। Oh, oh, oh.

0: वो शारदा के सितार में नहीं, विष्णु के शंख में नहीं। आप समझते हैं जो सुंदरता पैसों में है वो रति की सूरत में नहीं, स्वर्ग की झांकी में नहीं। पैसे में जो पवित्रता है वो गंगा के पानी में नहीं, सावित्री के दामन में नहीं। पैसे में जो ताकत है वो माँ के आशीर्वाद में नहीं, देवताओं की जुबान में नहीं। सत्य शिव सुंदर सब पैसा है। जिसके पास पैसा है वो राजा, और जिसके पास पैसा नहीं वो राजू।
1: 90s गेमिंग जोन, 90s गेमिंग जोन, 90s गेमिंग जोन। Nostalgic 90s এ এখন তোমার রিকোয়েস্টের গান, এখন তোমার রিকোয়েস্টের গান।
2: প্রীতি পাল কেষ্টপুর থেকে শুনতে চেয়েছে চমৎকার মুভির একটা গান। গানটা শুনে সৌমিকা রাত্র নস্টালজিক 90s এ ফিরছি।